था खाई ने चिके डर कहा तो खराब लोग खिपले तो खराब लोग खिपले बाला ना हेलो